मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हुन कटियै, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले।

मन मुख मोह विनाश। ज्यों पावे त्यों रख तू, ज्यों पावे त्यों राख तू, नानक तेरा दास। पौड़ी।

हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावै थाई, जिस हर पावै तिस गुर मिले, सो हर नाम ते आए, गुर शब्दी हर

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी, हर अमृत कथा श्रेष्ठ ऊतम।

पूजिए बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

शब्द तरे नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी हर अपनी भगत कराए वड्याई वेखालियन हर अपनी भगत कराए वड्याई वेखालियन अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन।

कनक कलश एक पाया, तिसमह तार चुवै अत निर्मल, रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम,

जन नानक गुर मिल रहस्य जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम त्याइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत हर

आपे तख्त बहै सच न्याई, सब चूकी कूक पुकारिया जियो। जेहा डिठा मैं ते हो कहया, तिस रस आया जिन भेद लहया।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थी मां जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला।

शब्द विचारा आनंद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के ला जियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा ते सूका हरिया।

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याय त्याय सुख पाया जियो मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवां सो सच मंदर जित सच त्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसह हर जन सच्चे नाम बिटहु कुर्बानो जियो सच बडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म न कहना।

सो गुर मिल निहचल कहना। प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी। बहा पकड़ तिस स्वामी मेले, जिस कै मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन बुठे, विण परमेश्वर सगले मुठे। संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

मनमुख परम भुलावणिया आपे देवै शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिलै वडियाई आपे सुन सुन ध्यावणिया माज महला तीजा सतगुर।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी। नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख लह जा बणिया। माज महला तीजा अमृत वर्ष।

माया मोह शब्द जलाया, सचो सच्चा वेख सालाहि, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम ना संभाल है से वडभागी। सच्चे शब्द आप हर नाम संभाल है से वडभागी।

आई। बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावणिया, गुर प्रसादी को जाना, दूजा मार मन सच समान।

गुरमति आप बुझावणियां रहाओ। सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवै प्रगट होई, गुप्त प्रगट वर

सलाहे सब कट अंतर सचो सच सुभा बनया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया पर पूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनया सच।

गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावहि मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावने गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावने गुरमुख

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिस कौ तू प्रभ

हंत दिन रहन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थाओ हर ओट

पौड़ी एक कंध मूल चुनखा है वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिर है जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जम काल

आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात। हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप पौड़ी। सतगुर

जिन अकथ कहाया अभ्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डर है समाना पूरे गुर का शब्द।

भगत करहै मूर्ख आप जनावहै, नच नच टपहै बहुत दुख पावहै। नचै टपै भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिनको लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा न।

नित नित सुख पाई, जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे, जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे, जन नानक हर रस तृप्ते।

पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

मन चित नित ध्याव हो। जन नानक जो अंति अवसर ले छाया, गौड़ी बैरागण महला चौथा। जिस मिले मन हुए आनंद, सो सतगुर कहिए। मन की दुविधा बिन सुजाए, हर परम पद लहिए।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साथे तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तहरी, तिन जम जोहन लागे।

पर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी मिल

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो मन

भगवान जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए भय सब बिन सहे हर कै नाए दिन हर पौ काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन अगा।

नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जामन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुण गाए गोपाल मिट है पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन।

एक महल ने मानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित बकता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरै धरयो, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए रहे।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

कहावों रिद सिद्ध बुलावों ताज कुल है सिर छतर बनावों बिन जगदीश कहां सच पावों खान मलूक कहावों राजा अबे तबे कूड़े है पाजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर।

होमै निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संहारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर भरम चुकावै निर्भौ कै कर ताड़ी लावै हों हों कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

पहला प्रथमे ब्रह्मा कालय घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया।

चालहि गुरमुख हुकम रजाई, रहहि अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोहै रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज कर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै,

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा धार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई।

आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझी ऐ सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पहाओ, परमे फूले आवो जाओ। मन मुख सूतक कबह न जाए।

मन निर्मल होए सतगुर सेवै सूतक जाए मरै न जन्मै काल न खाए शास्त्र सिमरत सोध देखह कोए बिन नामै को मुक्त न होए जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कलमह गुरमुख उतर सपार साचा मरै न आवै जाए नानक गुरमुख रहै समाए गौड़ी महला तीजा गुरमुख सेवा प्राण अधारा हर जियो राखो हिरदय।

गुर कै शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोह नत बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते भेख करे भेख तारी, अंतर तिशना फिरे अहंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलहाई।

वडभागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

पाए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई होमे मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई सतगुर सेव है से जन निर्मल पवित्ता मन स्यों मन मिलाए सब जग

मांग है लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को बिरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर तेजो मुह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन आन दिन बद्धे मारियन फिर वेला ना लहन हर

चलन, आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिस की सिरकार, ओह क्यों मनहु विसारिय हर रखिय हृदय धार।

काल, हर हर नाम संभाल तू, हर मुक्त करे अंत काल। मन कर हला बट भागिया, तू ज्ञान रतन संभाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम

मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना।

तब इसको है मुश्किल भारी, जब इन करने हार पछाता, तब इसनो नाही किछताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर माने भेदा, तब ते दुख दंड अर खेदा, जब इन एको एकी बूझया, तब ते इसनो सब किश सूझया, जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तिसलाथी, जब इसते एहो होयो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर मह दीपक जलियो, जीत

भागय। जास जपत बस आव है पंचार, जास जपत हृदय अमृत संचार, जास जपत ए तृष्णा बुझय, जास जपत हर दरगह सिजय।

कृपा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

आराम सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहा सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

आत्म घाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवां।

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ कह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देव

बिन उर तहारे नाह बिन करवास नाही पुछो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसह साच सुहेलिया।

जियो गुर पुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों मिलहै तुझे उडीनियां कर करहै सेवा शीश चरणी।

या जुगम है एक है कौ आया, जन्मत मोहयो मोहनी माया, गर्भ कुंट में उर्ध तप करते, सास सास सिमरत प्रभ रहते, उर्ज परे जो छोड़ छिड़ाना, देवनहार मन है बिसराना, कार हो कृपा जिस है गुसाई, इत उत नानक तिस बिसरहो नाही। श्लोक।

होवन हार होत सद आया, हुआ का अंत ना काहू पाया। कीट हस्त महपुर समाने, प्रगट पुरख सब ठाऊं जाने। जाको दीनो हर रस अपना, नानक गुरमुख हर हर तिह जपना। श्लोक आ

थित पाव हो गोविंद भज हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहो सद एक स्यों या साचा असने हो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

अखर महत्र पवन प्रवत हरे अखर कर कर वेद विचारे अखर शास्त्र सिमरत पुराना अखर नाद कथन बखियाना अखर मुकत जुगत पह परमा अखर मुकत जुगत पह परमा अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधाखेर कीने राम नाम एक आ

प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी, प्रभ कै सिमरन होए सो पहला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला,

अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमाहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख

देख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगहा नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल। अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कछ करै छपाया बाहर ज्ञान

कारी कहरी सब सृष्ट आपे आप सकल मह आप अनेक जुगत रच थाप ओथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड।

मन त्यों गुर का शब्द मन है अस्थम मन। ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुरचरण लगत निस्तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास।

आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ।

मास अष्टपदी संत सांग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक स्कट माहे अनकरंग नन्हा दृष्टा है।

नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी। जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े। तुद नो सब ध्यान दी।

कहे गुरिया गए मन खोटे कूड़ कूड़िया रे। जहां गुर कहे उठो मेरे भाई बह जाहे कुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कढे लद्धो वारे। ओए अगै पिछै।

जह अबोल तह मन न रहावा। बोल अबोल मद है सोई, जस ओहो है तस लख न कोई। अलह लहो तो क्या कहो, कहो ताको उपकार। बटक बीज महरव रहे हो, जाको तीन लोक विस्तार। अलह लहंता अलह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद। उल्ट भेद मन भेदे पायो अभंग अशेद।

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किश लेवहो जो उपजाय सो अलाख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

कर्ण शोभा कंठ फूल प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

जीवत दिसै तिस सर पर मरना मुआ होवे तिस नेह चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम।

सम्हारे। एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए पर है सतगुरु कै जिन परम बिदारिया कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई।

आढ़ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

पर एक है बहुविध बहुविध सृष्टि उपाई हुक्मे कार कराएं दा दूजा किस कहिए पाई।

हरि राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणे सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

भिष्ट छोड़ कर दोजक स्यो मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो परम।

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, बिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुर है तन दिया, ध्यान मान मन एक मै, प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्त अगाने मुक्त पए, जोत समाए।

सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया।

जपमन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमणम मत तत् ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

साह साह सदा संभालिए आपे बख्शे करे रजाए सेई ना चहे जो तुद पावे जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से।